0: थीम स्टार गोल हर एक वर्ल्ड कप चाहिए यो वर्ल्ड कप नहीं करो सेलिब्रेट मिली सभी जेनरेशन हिमस्टार टीवी खरीद करना पाउनुहोस् 32% सम्म को क्याशबैक वर्ल्ड कप 2026 को टीवी सीजन पास र एक वर्ष को नेट टीवी पैक शर्तहरू लागू हुने छन् हिमस्टार टीवी उही सेलिब्रेशन हर एक जेनरेशन
1: हिमस्टार फॉर अ कम्प्लीट होम।

World Inco festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box मात्र ₹12 प्रति महीना में सर्थ हरू लागू होने चाहिए। छिटो बने गए World Inco।

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रूप 12 से प्रति महीना में. सर्वहरु लागू होने चाहिए. छिटो बने गई Willing.
1: 94.2 The Mauli FM समुदाय को आवाज.

0: स्वर उद्धव कार्की र पूर्ण कला विषय
1: लय तथा शब्द उद्धव कार्की प्रकाश पुरी
0: शिवपुरी म्युजिक प्राली मार्फत उपलब्ध छ।

0: महल।
1: World Link Go Festivity Offer अब पाउंड होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थ लागू होने छिटो बने गई World Link।